बस अब मुझे काम का बना दे, बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महव ख्वाब गफलत, बस अब जग

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल्ल जलालुहू।

से कुछ काम बन जाएगा. वेल्थ इज अ वेरी गुड थिंग इफ इट इज द हैंड्स ऑफ अ गुड पर्सन. But if that wealth is taking to cinemas, discos and casinos and all other haram places, then it is not going to come of any help to the person in the akhirat, in the qabr. And even in this world, that kind of wealth will bring destruction. Ye duniya ka lalach ye hirso hawas, ye duniya ka lalach ye hirso hawas, ye dal dal hai tu isme san jayega. ये रंगी रसेली ये चेहरा हसी के मिट्टी में मल ये बद

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालहु यार रहे यारब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर वक्त जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होश